मैं जरा अपने गुरु से ठीक से सीख लूं, फिर मैं I'm sorry, my good friend, let me learn it properly from my guru, then I will teach you.